0: भगवान श्री सत्य साई बाबा सेस
1: टुडे वी फाइंड पीपल डिपॉजिटिंग देयर मनी इन बैंक्स लाइकवाइज डिपॉजिट द पावर ऑफ योर सेंसेस योर माइंड एंड द विजडम इन द बैंक ऑफ गॉड they will never diminish they will continue to grow forever and will be returned to you in times of need sustain and safeguard sacred love never give vent to hatred consider whatever happens as good for you

गुरमुख बिरले जाने। ये पंक्ति जिस विच सारे शब्द का केंद्री भाव है, भगत जी दसदे हन कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करके नाम सिमरदा है